आजू चाहत करतू उचने जोगर दो द्रोमी क्रेज ने जो गन का रसने रोसो ग्रेमी उजे तर्जिक डोबी दो उजे बेर जो उजे पाँच सात कर गए जिने करा नहीं लंबा भी मकर गोलू टेक्निशियन हम चोक भी गब्रियल जैसे कौन आने दें जो बाब के गेटना जान आउं जा जान जान देव ने आउं मातरा दुबारा तेलम गायस को कंजे किला मिया तेलम के लिए देने जी गोमिया हो जी मर्सी लेसी